0: जाए, वर्ण का जाए।
1: बेंगावा मामं पालामुवलुवा बेंगावा कारवारा निंगेरिक पामालारा कैंपिरा माप्यापुआ नम्मबिल्ला माप्यापुआ मुवलुवा बेंगावा एकमंजा निंगेरिक पामालारा